हरे सेई तुद नौ गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुद नौ गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठा

सगल समग्री तुम रह सूत्र तहारी, तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा गुरु बोलना जी वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पात।

गोबिंद सिंह महाराज हरी परमात्मा कहते वह ध्यान च ही नहीं आता कि रूप का ध्यान च लैके आइए वह तो निराकार है फिर उसका विस्थार कलगीधर पातशाह महाराज ने अकाल उस्तत के अंदर बड़ा कमाल किया ध्यान धरो तेह को जग मैं जेह को अमितो सब है जग जायो कमाल कर दी कलगीधर पातशाह महाराज आओ श्रवण करिए बड़े प्यार के अंदर आके

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे शब्द खजाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावें ताए सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा माननी वाह मत उची मत पद दे राखे आप काल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो निमाणिया दे मान ने ताणिया दे तान ने ओटिया दी ओड़ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी दे हजूर उदास बेनती आप दियां कृपा रहमत कीती आप दी पावन हजूरी विच शाम दे सुंदर दीवान सजे हान सजे हुए दीवाना विच गुरबाणी दी लड़ीवार कथा विचार गुरमत विचारां गुरबाणी दे कीर्तन छे पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप होया है। कृपा करनी पातशाह जीओ समुचियां सेवावां निभाउंदियां होया पुल चुग दी खिमा बख्शना पढ़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन दा भाव आईया संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिल फुल पेटावां प्रवान करनियां धरो घरो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवारां विच सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने जेलां विच बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ दी चढ़दी कला करनी बख्शां खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देग सज के हाजर है करी पाक साल सोज पवित्रा हुन लाभ भोग हराए आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख वाग दी बख्श करो से ही प्यारे मेल जिना मिले आम जिया दा नाम चितावे।

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

परानय छोड़ जाए तुझका श्रम कर संग सहाय तुस पर हर चंदन लेप उतारे तो हे घर द प्रीत पसम संग होए अंत गुप मैं पातत बेकरार नानक काढ़ो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेखन तरमल माया छपस नाय कश करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान इशनान अंतर व्यापे लोभ सुमान अंतर अगन भारत स्वागल पात्र कैसे तरे यथा जाके अंतर बसे प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावे कर गए लेह ओढ़ निबहावे कहा बुझारत बुझे डोरा नस्कैये तो समझे पूरा कहा बिसन बद गावे गुंग जतन करे तापी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पव नहीं हो तू हावस गमन करता करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तराय संग साई सो आवे ना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलवा के ग्रह पीतर बसाय अंध खेल माया रंग रसा दृढ़कर माने मन प्रतीत काल ना आवे मुड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बिकार महा लोभ द्रोही आहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लेवापन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो बिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते हो स्व आज्ञाकारी तुमरी गद में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक दीन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुभाए नानक कहू ना सी जाय बिन नाम पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तकान भी खोट गवावे एक भी ना दे दस भी हेर ले तो मुड़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से हो ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जाके मन लागा बड़ा मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिजन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक दिन पाया अगंत साप नी दे रास खात पीत बरते अर्द उलास अपनी अमान कश बहुर शार अज्ञानी मन रोज करे अपनी प्रतीता भी खोब है बहुर उसका विश्वास न हो वह जिसकी बस स आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उससे चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्व रहो बद जान अनेत बिरखी छाया शिवरंग लाभ अभिन से मन पछताव जो दिशा सो चालन हाल लपट रहो ते अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने ताकु हाथ ना आवे के हे मन हर के राम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक बलाय लाई मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राजन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रथस्ती आसु वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता मिथ्या त्रो मो अभिमान मिथ्या आप सुप्र कर तुग महान अस्त्र भगत साधु की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन बर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्प को हरे मिथ्या रे तर पेखत पर त्रे रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बिकार गोतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभा मिथ्या तर नहीं पर बुकारा मिथ्या बास लेद बेकारा बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लहे बिरथी सागत की आरजा साज बना के हो बल सुचा बिरथा नाम बिना धन अंध मुखा बता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय

है सो मुक्ता हुए सुनमीता नानक बिनवंता साध जना की आचार्य कथा अष्टपदी साधक संग मुख उजल होत साध संग मल सगरी खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रकट सुगियान साधक संग बुझे ब्रह्म रेरा साध संग सबोतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ब्रजतन साध की महिमा बरने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा है समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हुए सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कत मुतावय साधक संग अस्तित मन पावय साधक संग माया दिन साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महा पुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर।

ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्मज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्मज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्मज्ञान लेता अब्द बंधा ब्रह्मज्ञानी का सफला ब्रह्मज्ञानी सफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी जपाय सकल संसार ब्रह्मज्ञानी का एका रंग ब्रह्मज्ञानी का बस प्रभु संग ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार ब्रह्मज्ञानी का नाम परवार ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्मज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्मज्ञानी का कार सदा आनंद ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्मज्ञानी एक संहिता ब्रह्मज्ञानी का वे अचिंत ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्मज्ञानी जस करे प्रभाव ब्रह्मज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्मज्ञानी का दर्श बटपा की बाह्य ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्मज्ञानी या परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथे न जाय अदा खेर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखान ब्रह्मज्ञानी की गात ब्रह्मज्ञानी जान ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्मज्ञानी सद जीव है नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहात ब्रह्मज्ञानी का सक्रियाकार ब्रह्मज्ञानी आम निरंकार ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बने नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी सलोक और तारा है जो अंतर नाम शर्मा पिख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श भारत रूपना पिख नेत्र साध की टहल संसंगेत करना सुने काहू की निंदा सबते जाने आप इसको मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मन ते ठरे इंद्री जित पंच दोगते रहत नानकोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सहो जिस सुप्रसन्न विषन की माया दे हुए भिन्न कर्म करतो बने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म का उपल की इच्छा नहीं बाछ है केवल भगत कीर्तन संग राछ है मंत्र अंतर सिमरण गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल दृढ़ अवरे नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मंदे बिनसे सगला परम घर पूजे सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मन खोबे जिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल कराय नित नीत मंथन अर्पय बिशन प्रीत अर्गे जन हृदय बसाव नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम तम सोध राम नाम सारस पीवा उस पंडित

राष्ट्रपति, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट मान पर मैं उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कबका बिचारे, कई कोट लभत नाम त्यावे, नानक करते कंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिगात मनिखोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख ना करे, कई कोट माया सरम माहे, कई कोट पर देश प्रमाहे, जित जित लाभो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बृख बृख निभ जाए, कई कोट पवन पानी बह संतर, कई कोट देश भूमंडल,

जो जाने मैं जो बनमंत सोहिष्टा का जनता करमंत का आवे जन्म मरे बहु जोन परमावे धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्ख अद्धा अज्ञान कर कृपा सिखा हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्ति आगे सुख पावे तलवंता कर कर भावे तरिन समान काश संगना जावे बहु लश्कर मान खुपर करे आस पल भीतरता का होए बिना सब ते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए बस मन किसी ना बदे आप अहंकारी धर्मराय तुझ करे खुवारी।

अंतर्गत जो और किरमाए संतन गए दुखम तृष्णा में जलाय संत गए दुखन सब गोशलाय संत गए दुखम ते सब जाए संत गए दुखन नीच निचाए संतों की का ना थाऊ को राहे नानक संत पावे तो वह भी गत पाए संत का नंदक महात ताई संत का नंदक इंट करना पाई संत का नंदक महात्यारा संत का नंदक परमेश्वर महाराज

नानक दुख परम भाव जाए अष्टपदी मानु की टेक प्रीति सब जान देवन को एका भगवान जिसके दिया रह अगाए बाहर न तृष्णा लागे आए मारे राखे एको आ मानु का शनाई हाथ उसका हुकम बो सुख हुए तिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोए

तो ताता है बिन मैल कह हो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाणता कौन को मान कौन अभिमान जा स्वरूप केवल जगदीशता छाल छिद्र लगत कौ कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समाप्त किसे भूकम द्रवताप है करण ग्राम करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग मनाए तब गमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे।

पापं ते पैकहावत कौ नरको स्वर्गवंशावतार जाल माया जंजाल होमे मोह परम पैपार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच है तौ नानक एका जावगत भगत आप ज पसरे पासार संत प्रताप दुहु पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौता करे।

अष्टपदी पूरे गुरुगा सुनपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरा चिंद पास अनित्यागो तरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती करहो सासंग अगन सार्ग सागर तरहो हर तन के पर लेहो पंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग पाज परमानंद

कै रंग कुन्नी पापी आख नाहे कर कर करना लेखे लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो।

कारज लावे लिखे आवे भाग आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी

नान कथन करड़ा सार जात पहार तीर जुसनियार अहरन मात वेद हथी हर पाओ खलाय अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल करिय शब्द सटी टकसाल।

कह ना सकत के अचाल मूरत अनुभव प्रकाश अमित ओज कहिजै कोट इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजै तिरपहु महीप सुर नर असुर नेत नेत बान त्रेन कहत तवै सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम भरनत सुमत पजंग प्रयात छंद नवाह तवं काले नवाह तवं कृपाले

है, अपिहित है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है,

है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रियंग प्रयाशंद नमो सर्वमाने स्वह तीन दाने, नमो देव देवे पेखी पेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे।

ऊर्ध अर्धं अगं ओघ हर्ता परम परम परमेहुरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदीय भेदीय नामं कामं सुभाषतो पराजी

है, गनी मुल्क राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभुक्त है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुगत सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, संभातो पराज है, सदा सर्वसाज है, संभातल सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओं आद रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभगं त्रिवादे गंजे गादे शुभंग सर्वभागे सो सर्वा अनुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है, अछेज है, अछूत है, के नरकं प्रनास है, पृथ्वी उल प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है,

सूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, बंध है, भगत है, प्रगत है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनित है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत व प्रसाद।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब राता किल बुख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन कौशय करता श्री अहतो जय पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांसत फल पावे सोई दुख न तिसे बे आवत कोई अडिल सुने गोंग जो जाहे सुरसना।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सारे वडभागी हो तनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन गोद विच बैठ के सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उसकी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया ओ पावन शब्द तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन रचना तो उच्चारण किया होया। राग वडहंस दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 583 584 उत्ते सुशोभित है। चार पदे इस शब्द दे हन

सारे संसार नूं जीवन देण वाला है, जग जीवन इस सारे संसार नूं जीवन देण वाला है, भाव सारिआं नूं पैदा करन वाला है, जन्म देण वाला है। कहण लगे जिहड़े मनुख परमात्मा नूं भुल गए, वह अंदरों ठगे गए, उन्हां दा आत्मक जीवन की मौत हो गई, फिर उन्हां नूं की रोईए। हुण रोंदे ने लोकी, रोंदे ने किस नूं रोंदे ने? जिहड़े शरीरक तौर ते मर जाण उन्हां नूं लोकी बड़े रोंदे ने, पर कहण लगे जिन्हां ने परमात्मा नूं भुलाया, जिहड़े अंदरों मर गए, उन्हां दे दुखां नूं देख के की रोईए, क्यों निराश होईए? सब जग आप उपायो न आवण जाण संसारे। ये भाई उस परमात्मा ने आप सारे संसार की उत्पत्ति की है, ते ए जगत सारा ही आवण जाण की एक खेड बनाई हुई है। उस रब ने सारा ही ए जन्म मरण के गेड़ विच आउंदा है। सो फिर सदा सदी साचा है, ना ओ मरे ना जाए। कहने लगे जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरु है, जिहड़ा परमात्मा है, वह सदा कायम रहने वाला है, वह सदा ही कायम रहने वाला है, वह कदे मरदा नहीं, ते अपने प्यारियां नू छड़ के कदे दूर नहीं जांदा, वह अपने प्यारियां दे नाल रहिंदा है। भगत रविदास जी तां इत्थे तक कहिंदे ने, कह रविदास हाथ पै नीरस, सगले कह रविदास हाथ पै नीर। जो आप वेखते ना, जो पैर चे कंडा चुभे, कंडा पैर चे चुभिया, पर एकदम हाथ अगे आउंदा है उस कंडे नूं कढ़न वास्ते। पर यह गल किवें समझ आवे, जो सड़क ते कोई दूजा कोई मनुख वार करता है, कोई सिर ते वार करे, एकदम हाथ अगे आउंदा है सिर नूं बचाउण वास्ते। ते भगत रविदास जी ने बड़े कमाल दी उदाहरण दिती, पर कहन लगे सहजे होए सो हुई, ए समझ सहज विच टिक के तां समझ ए गल आउंदी है कि ओ परमात्मा साडे हत्थ तों वी नेड़े है। कह रविदास हाथ पै नेड़ै, सहजे होए सो हुई, सारिआं नूं थोड़ी ना समझ ए गल आउंदी है। कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछड़ी चले खजूर काए, रे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो। कहने लगे प्यारियो, कोई उस परमात्मा नूं कहिंदा वी रब बड़ा दूर है, कोई कहिंदा रब बड़ा नेड़े है, पर कहने लगे दोनों ही ना समझने। एक कहिंदा रब नेड़े है, एक कहिंदा रब दूर है। वो परमात्मा नेड़े भी है, वो परमात्मा दूर भी है, वह परमात्मा अंदर भी है, वह परमात्मा बाहर भी है, वह परमात्मा हरेक जगह है। फिर गुरदेव पातशाह जी कहिंदे ने, कहन लगे भुली फिरे धानी आणिया, रंड बैठी दूजे पाए। दूजे पाए माया नाल प्यार पाके ओ जीव रूप इस्तरियां दुखी हुंदियां ने परमात्मा नूं भुल के। रंड बैठी दूजे पाए, माया मोह दुख पाए, आव कटे तन शिजे। हुण उमर बीतदी जांदी है, आव कटे दिनों दिन उमर घटदी है। गुरबाणी बड़े सौखे ढंग नाल समझाउंदी है, बड़ी अखां खोलदी है। जननी जानत सुत वड्डा पोत है। एक मां अपने बच्चे नूं जदों देखदी ना भी मेरा बच्चा हुण छोटा जिहा है, हुण थोड़ा वड्डा होया, मां खुश हुंदी है। बच्चा होर वड्डा हुंदा है, मां होर खुश हुंदी है। बच्चा जवान होया, मां होर ज्यादा खुश हुंदी है भी मां दे मन विच इह खुशियां आउंदियां ने, मेरा पुत मेरी धी इह वड्डे हुंदे जा रहे। पर कहण लगे ओ मां बड़ी भोली है, ओ इन्ना नहीं जानदी, दिन दिन औध घटत है कि तेरे बच्चे दी उम्र दिने दिन घटदी जा रही है। भोलीए मां, अज बच्चा तेरा एक साल दा होया, ते जिन्नी उम्र इसनू वाहिगुरु जी ने दिती है, ओ एक साल घट गई,
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ। ਮਾਂ ਭੋਲੀਏ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਘੱਟ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅੱਜ ਇਹ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 20-22 ਸਾਲ ਘੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਆਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਸੇ, ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ ਭਾਏ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਮਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਮਕਾਲ ਨਾ ਸੁੱਜੈ ਮਾਇਆ ਜਗ ਲੁੱਜੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਚ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਭ ਲੋਭ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲਭ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਚਾ ਸਦੀ ਸਾਚਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।

संत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरा न जाए गुरमुख जाता शब्द पिछाता साचे प्रेम समाए।

फते एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत आजुनि सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुदाद सच हैपी सच नानक होसी भी सच वाह गुरु।

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
1: काल क्लेशन माहे मिटावो
0: सिमरो जास मसंबर एक
1: नाम जपत्या अनेक
0: वेद प्राण सिमर।